0: तड़ाई माशे में जी दार तो ये पदशा पर सीधे तशा हो खस्ती थी
1: जनाते से तारखाना पशा पर के हमें इश्मा वाशिंग पाउडर हो खस्ती थी
0: इश्मा वाशिंग पाउडर मड़ाई में जी मोह कोरता नेशनल और मल्टी नेशनल कपने वल वाशिंग पाउडर वड़ी भी कुर्श अक्सर गिलार तक की जी दस रंगे सरा प्रोबरे
1: बिल्कुल तारखाना दा गिले वे हर वक्त मुताहा कुर्श डाले हो चे कराना में कुर्ता इश्मा वाशिंग पाउडर वडल से रिकड़े दी वो स्टोल कुर वाला नफाशोल दी
0: अच्छा मिस जी ब्याह कुर्ता जहर सरा ब्रो वो दर तो या चेप इश्मा वाशिंग पाउडर से सदा से खास खसूसियात थी
1: तारे कहना इश्मा वाशिंग पाउडर खास खसूसियात दागा दी चे कपड़े सब युक्शली को जोर ना जोर दाग पर गारंटे सरा खत्म करी जाखर सजूद की वो दिनोर सरफे पर नस्बात इश्मा वाशिंग पाउडर काम इस्तेमाल जी और बला खबर अदा कपड़े सपोई पवात लोसीना नखर पवी
0: शाम इस जी चे दम रक्षला रिजल्ट ये दाए दर तो ये दाओ मोता चेरता मिला भी जी
1: तारे खाना दाओ तो दफ बने गल से अंदरून ला की गेट जान से बे गाले पर शे मार्केट से देश मा मेन डिस्ट्रीब्यूटर हाफिज जहीर साहब सर उधर से मिला भी जी।

0: खूबसूरत बन जाए जब साथ हो एक खूबसूरत आवाज़ रेडियो अमन 88.4 करत, जहां मसीह की मालूमात और एंटरटेनमेंट सब कुछ आपके लिए।
1: बारिश में ड्राइवर हजरात एहतियात से गाड़ी चलाएं, क्योंकि जगह जगह बारिश का पानी कड़ा होता है, जिसकी वजह से लोगों की कपड़े खराब हो जाती हैं और फिर राह चलते लोग अक्सर बददुआएं देना शुरू कर देते हैं। बाज़ औक़ात तो बात लड़ाई तक पहुंच जाती है, इसलिए रफ्तार धीमी रखें और एहतियात करें। राह चलने वालों से भी इल्तिमास है कि बिला वजह सड़क पर जाने से गुरेज करें। अगर जरूरत ज्यादा हो तो गाड़ी न होने की सूरत में सड़क क्रॉस करें। जिम्मेदार शहरी बने और हुब्बुल वतनी का सबूत दें। शुक्रिया।
2: ये पैगाम आपको रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क की तरफ से पेश किया गया है। रेडियो अमन नेटवर्क, जन रंग अमन।

unknown girl. Welcome to the show and salam to you, Sarji, and a special salam selfish Nuri ko. Show is outstanding. Please play Urdu sad song. Your voice is okay. Okay, ji. Walaikum assalam and thank you so very much. Jananna unknown girl kehti hai kal kaha jana hai ek mahine ke liye. Agar aap log ko jana hai to ready ho jaye. Waise bhi अच्छा रूडी के प्रोग्राम पे जाना है. वाह जी, एक महीने पहले से जाती हूँ. वाह क्या बात है. अगेन नो दिस इज फॉर ऑल एंड वन मोलली सेड एक्सटेंड द हैंड ऑफ फ्रेंडशिप ओनली वेयर यू फाइंड ट्रूथ एंड सिंसियरिटी अदरवाइज लाइन लोन लाइन्स इज योर बेस्ट कंपेनियन. ओके जी, खत दस को मुक्त तर्जुमाओं का विदाउट चैट जीपीटी विदाउट मीटा. ओके दे मुक्त तर्जुमाओं को डरे के रहता सेंड का बसते पूरी समझता सो मतलब चैट जीपीटी ना यूज करे खा जी खा Assalamualaikum Rehan bhai, how are you? Show is salam to vice grade officer Khalik Noor Khan and all listener. Okay, from Abiyah and Haima Pathan. Okay, walaikum salam and thank you so very much. Again Abiyah and Haima kehti hain Pathan from Karaka bhai aga latifa wa kachi wa sadi sara dwa amon che agi na cha pushtana kachi chana wadi akhi wa tamay. This is a funny thing.

0: आप सुन रहे हैं रेडियो मन 88.4 करक, जहां मुसिकी मालूमात, इस्लामिक प्रोग्राम और एंटरटेनमेंट शो हमेशा आपके साथ रहते हैं। रेडियो मन 88.4 करक, आपकी आवाज, आपका एहसास।
1: द करक अनूर शो खाखल को द पारा द खुशाले खबर उस्तासो पाखपल खार करक की द डीरो गण बीमारो लका शुगर अरकुन निसा फालिज जुड़न बीमारी गुर्दों की कहानी त्रिख की कहानी ब्यौलादी बावसीर मैदी जख्म ब्लड प्रेशर लुगन लगी दिल द वजूद सुस्ती प्रास्टेट दमला दर्द द जुड़न बीमारी और द जनानो नारिनो नूर पिट औखकार बीमारो पशमूल द हर मरज इलाज पा तसले सरा दियो तकड़ा काबिल और तजुर्बाकार डॉक्टर सैयद जाकिर शाह बाचा से अपना खवलिशे सूखची डीचमिस बीचमिस अलचिम्पी और नूर सनदुना तरला से कौन की द पेखवर मशहूर होम्यो फिजिशियन दे द नूर मालूम द पारा पा दे नंबर राबित उकड़े 0331-52-65-340 पता याद साथे पिशावर हेल्थ मेडिकल सेंटर मलिक सिंजित मखामख सिविक प्लाजा जेल चौक खरग।